0: me a extreme energy drink.
1: एनएम विदारा बचत खाता प्रदेश को प्रगति संग बचत को नाता
2: रारा को निर्मल पानी जस्ते सोच्छ आफ्नो अमूल्य बचत आजै खोलौ कर्णाली प्रदेश विशेष एनएमबी रारा बचत खाता
3: पाउनुहोस् पहिलो वर्ष निशुल्क मोबाइल बैंकिङ इन्टरनेट बैंकिङ डेबिट कार्ड डिमैट र मेरो शेयर पनि
1: प्रदेशको प्रगति सँग
4: रेडियो भेरी एफएम
5: रेडियो भेरी एफएम 98.6 र 102.7 मेगाहर्ज

0: Patagonia.
1: Extreme energy drink.
2: एनएम बिरारा बचत खाता प्रदेश को प्रगति संग बचत को नाता
3: रारा को निर्मल पानी जस्ते सोच्छ आफ्नो अमूल्य बचत आजै खोलौ कर्णाली प्रदेश विशेष एनएमबी रारा बचत खाता
4: पाउनुहोस् पहिलो वर्ष निशुल्क मोबाइल बैंकिङ इन्टरनेट बैंकिङ डेबिट कार्ड डिमैट र मेरो शेयर पनि
2: प्रदेशको प्रगति सङ्घ

0: जनता केवल पांच दशक देखी
1: रेडियो भेरी एफएम, रेडियो भेरी एफएम,
2: रेडियो भेरी एफएम 98.6 वैक्सी 2.7 मेगाहर्ट्ज़
3: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 8 बजे को था
4: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: सी वासिङ मेसिन र टिभी किस्ताबन्दीमा पनि उपलब्ध छन्।
1: प्रोप राइटर रवि लामिछाने, रवि इलेक्ट्रोनिक्स एन्ड मोबाइल हब, वीरेन्द्र नगर 6 बीच बजार सुर्खेत। मोबाइल नम्बर 9858405719 र 9858517015।
2: रेडियो भेरी एफएम।